ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸੰਭਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਹਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਖੇਲੇ ਬਿਗਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੇਹ ਦੇ ਧਾਵੇ ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਦੇਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸੀਸ ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੇ ਜਗਦੀਸ ਜੀਓ ਪਿਣ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੇ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੇ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰ ਖਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬੂ ਨੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਊਬ ਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੇ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹੇ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤੇ ਵਿਹੀਰਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਗਿਆਨ ਕਬੂ ਮੂਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਟ ਹੱਥ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮੇ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਉ ਪਾਵੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਮਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬੇਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੇ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮ ਆਵੈ ਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੇ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬੋ ਲਸਕਰ ਮਾਨਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਧੇ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨੇ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਾਬੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਾਪ ਖਾਪ ਮਰੈ
बिना संतोख नहीं को राज है सुपन मनोरथ व्यर्थे सब काज है नाम रंग सर्व सखोए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करना हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कुछ किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु कै संग बूझे देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सदी रहा समाय आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आपन आप किनो आपन बेथार सब कछ उसका ओ करने हार ओते भैन कहो कछ होए थान थनांतर एक सोए अपने चलते आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोड़ मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुने सरबन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपति संत के दुखन आरजा घटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक मह पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान प्रट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यो लवै संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन के दुखन तृष्णा मह जल है संत के दुखन सब को छल है संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा आतताई संत का निंदक खन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक सदा बिजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा आपवैत संत का दुखी किसे का नहीं मैत संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महाहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्म मरै संत के दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाहीं ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटै संत का दुखी किते काज ना पहुँचे संत के दुखी को उद्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर न राखन हार नानक संत पावे ता ले उभार संत का दुखी इउं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पाप के ईंधन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे अकेला जो बवाड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंद का तुर ही पिया नानक जो तिस भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गै मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रष्ट कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की औतत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ भागे नानक जन से सलोक तजो सियानप सुर जनो सिमरो हर हर राए एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी
मन की टेक व्यर्थी सब जान देवन को एके भगवान जिसके दिए रहे अगाए बो न तृष्णा लागे आए मारे राख एको आप मन के कछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ पर होए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लाके कोए औसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकर का रंग साध संग बिनसे सब संग चरण चलो मार्ग को बिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक ऊजल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने एते उत की ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते ओ हर जन रहत अंदन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जय जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जैस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चेते आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सा बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नै किश जन्म है नै किश मरै आपन चलते आप ही करै आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल मैं आप अनक जगत राय थाप ओथाप अविनाशी नाही किज खंड धारण धारहो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उधरे तैन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लै कृपाल गुर का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करे बड भागै नाम जप तो पावे बिश्राम नानक तिन पुर को उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपाए होवे सो होए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजित समाए समाए उ सुख निधान उनहु बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्ब जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जैस मन माहे तेते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए।

ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸਕੀ ਸ੍ਰਿੜ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਅਵ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਵਰਤਿਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੋ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਦ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਦ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਦ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੈਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇਲੇ ਬਤ ਗਡਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਏ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਸ ਨ ਕਾਟ ਤੇ ਆਪ ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤਬ ਭਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਜ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੱਖ ਵਡਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੱਖ ਵਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਾਧ ਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਹ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੋ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਹ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਮਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਓ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿਵ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਧਿਆਵੈ
मन बेचै सतगुर कै पास ते सेव के कार्ज रास सेवा करत होए नहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेव गुर की मतले बीस बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्ब निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख तपनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पीड़ित संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करन अघने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमर दृढ़ पेखे होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए जे बाए कौतत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हिरदे सिमर सद बलहारी सत गुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरखा नाई कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश शिव को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम दुख तै ते नासे तवत माए ठाठ वरताई अंध पिया दुख नाठे भाई जन मरन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाए चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सर गुण पी ओही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बिनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रविया रूप रंग पह प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन साराष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव समीत बसारो चरण कमल रिद मह और तहारो करन कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आथ राखो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कोंटी उठ थावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करे भली करनी सा सोभा पज हर की सरणी अनक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आव खद लाए सर्ब निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन प्रबोधो हर कै नाए दे दिस धावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पो बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास तित कर जाए बसे अबनासी को नान काटी जम फासी तत बिचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव एव रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पाव न छूटन हारे सिमर साध बेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटांबियार बनता इनते कहो तम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इनते कहो कवन छुटकार अस हाथी रथ असवारी
झूठा डंफ झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसर नानक पछताना गुर की मातों ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सद हर को नाओ सहस पाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होए अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रह सरनाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सास संग पावे सच तना हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहो प्रभ व्याप अनक बिथार एक ते पह एक अराध पराछत गय मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृढ़ महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डुलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाहो साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहा सद संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सुख बिसरै जे काल न भन सुख बिसरै जे किया जन सुख बिसरे जिन सब किछ दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सुख बिसरै जे अगन मै राख गुर प्रसाद को बिरला लख सुख बिसरे जे बिखते काढ जन्म जन्म का टूटा गांड गुर पूरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहु काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट दजाद पाए बिसराम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तने अंतर एही सवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बाती जे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बकसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आए हर के नाम की कथा मन पाए बहु पूजन का पर संगीत रसना जपति हर हर नीत भली सुकरणी सोभा धनवंत हिरदे बसे पूर्ण गौर मंत
साध संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे कछ ना दृष्टे ता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चहन ना जापत तब हरक सो को किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कस होवत परम आपन के लाप वरती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब एके हर अगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहस पाए तब सिख सब सकत कहो कत ठाए जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपने जोत धरे तब कवन डर कवन कत डर आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अबनासी सुख आपने आसन तय जन मरण कह कहा अभिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कैस होए जब अवगत गोचर प्रभे का तब चित्र गवत किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ये चर जा नानके आपन रूप आप ये पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लागत कहो कीस जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे ते किसे पूह कमल त्रिपतावे करण करावन करने हार नानक करते का नाय समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत भाई जय सर्व कला आपे पर बीन तय भेद देव कहा को चीन जब आपने आप और तारे तो सगन आप सगन कहा बिचार जय आपन ऊंचे आपने आप नेरा तय कौन ठाकर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जे अचल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे देश तय गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप तियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा भो बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप्रच्य पर पंच कार तय गुण में किनो बेथार पापुन तय पई कहावत कु नरक कु स्वर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचे तो नानक एक जय अवगत भगत है आप जय पसरे पसार संत परताप दूह पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहू बनी आपे कद करे अंद चो जे आपे रस भोगन निरजोग जिस भावे तस आपन नाए लावे जिस भावे तस खेल खिलावे बेसमार अथा अगणत अतोले जो बलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टा राष्ट्रपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्थार जात पावे त्रेट पाए अपने पाने लय समाए तुम ते पैन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जी ओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेठ का जेता जी जंतर सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तस कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो बिसार तिस तज और कहा को जाए सब सरीक निरंजन राय जी की जोत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर हे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामे रहो बेआप प्रतपाले जीन बपात जो जो रचो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक एक जान्या
जन लागा हर एक नाय तिसकी आसन बिरथी जाए सेव को सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर आंदन पूजे गौर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का ए सुवाओ आठ पैर प्रभे खो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हिरदे बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पल दो लेहो सवार राम नाम अंतर और तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साच परीखिया मंत्र नाम जपो लेव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोहर न आवे जाए तहते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार ते आए निर पौ जपे सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तेजन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृहट दर्शन पेखत उदरत सरैट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोहत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन पर गास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सकट माहे अनक रंग नाना दृहटा है नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जई चर्ज बिस्माद तैन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तेह जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माए आकाश पयाल सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पाणी बेसंतर माहे चार कुंड दे दिसे समाहे तेहते पैन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससीर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोला आप डोल न कब हो डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत धार्यो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में एहो बसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हिरदे सब धर्म संत जना सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचना जन जाता तिसकी रहत सत बजन साधु सब कहत जो जो होई सोई सुख मन करन करावन हार प्रभ जान है अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत पत तिस भावे ता करे बेथार तिस भावे ता एकंकार अनकला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक ते जन आप बजाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समग्री जा का तना आपन जास आप ही सुना आवन जानक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मद अलप तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कह आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते होई सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत आतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच
ਓਤ ਪੋਤਿਆ ਪਨ ਸੰਗ ਰਾਚ ਤਾਕੇ ਗਤਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਓਤ ਹਨੁਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਸ ਰਿਦੇ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਾਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਓ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ

करे प्रभ गाज प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तन कै साथे सरन जोग सो।

साध संग लैना सो प्रसन्न पै गुरदेव पूरन होई सेवक की सेवा आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद।

सुख मुनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बस सो होत निदान, सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख परगट सब लोए, सब ते ऊ

सिमरत सातर वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कूट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मत कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन मरण ताका दुख निवारै दुलाभ दे तत काल उधारे निर्मल सोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता।

साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेयन तिस साहेब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत।

पिंड सब तन अर पीजै इयो दर्शन हर जियो पाई है। भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै

सुफल फला से सिमरह जिन आप सिमर सिमराय नानक ता कै लागो पाए रव का सिमरन सब ते उचा रव कै सिमरन उधर मुचा रव कै सिमरन त्रिसना बुझय रव कै सिमरन सब कह सुजय रव कै सिमरन नाही जम त्रासा रव कै सिमरन पूर्ण आसा रव कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माह समाए प्रभ जी बस सहसाद गिर सना नानक जन का दासन दसना प्रभ कौ सिमरह से तनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन प्रवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ कौ सिमरह से पारपकारी प्रभ कौ सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ कौ सिमरह से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमरह तिन सुख बेहावे प्रभ कौ सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ कौ सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ कौ सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभ कौ सिमरह बसे हर नेरे

संगत पाइए। छूटत नहीं कोट लाख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए सिंघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक

पार रतन त्याग कौडी संग रचै सांच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर्मा ने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम कर संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोय घर तब प्रीत भस्म संग होए

समझै पोहरा कहां बिसन पद गावे गोंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सुहावे न चीत जो बैराईता स्यो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अंध केल माया रंग रसै

अंत साधु की शोभा सदा में अंत साधु की शोभा उचित उचि साधु की शोभा मूचित मूचि साधु की शोभा साध बने आई नानक साधु प्रभु भेद न पाई श्लोक मन साजा मुख साजा सोहे अवर न पेख किसमिन कोई नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेव जैसे जल में कमले लेव ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सुख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान तो

ब्रह्म ज्ञानी सगल क्रिय नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कश ब्रह न पय ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी केन्द्र हित अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सख्याय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जैसे करे प्रभया ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार, ब्रह्म ज्ञानी आवनिंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, गुर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकुर, नमस्कार नानक अपर सगल निस्तारे अष्टपदी।

बहु विधियन प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीथवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काम विचार है।

कहीं गुड़ बोजोनी फिर है, कहीं कोट बैठ ही खाहे, कहीं गोड़ काले थक पाहे, कई कोड़ किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे।

कमल हंते कई कोर दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिले प्रभ अविनाश कई कोर मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लांगा रंग जन कहो आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तहन तहन कई कोर

सौ गर्ख रंग हसे कबहू निंद व्यवहार कबहू ऊब कास प्याल कबहू बेता ब्रह्मचार नानक आप मिला मनहार कबहू नृत करे बोपाद कबहू सोए रह दिन रात कबहू महा क्रोध विकराल कबहू सर्ब किए उतरवाल कबहू होए बह बड़ राजा

अष्टपदी। जिसके अंतर राजमान सो नरक पाती होवत सुहान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा है ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आ गए सुख पावे। तन भंता हुए कर कृपावे त्रय समान का संग न जावे। बवलस कृपान उख पुर करे आज पर पितरता का हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खैन में हो जाए पसमंद किसे न बदे आप अहंकारी धर्मराज तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए प्रवान।

राजे स्वप्न मनोवर्थ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख हो बड़ा भागी किसे प्राप्त हो कर्ण करावन आपे आव सदा सदा नानक हर जाव कर्ण करावन करने हार कह हाथ कहाँ विचार

समाय आप उपदेश है समझे आप आपे रचे सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब कछ उसका करने हार ते बिन कह किछ होए।

कहत कीर्तनिंद कातुर ही पयानान ग्रोत पावै सोई थया। संत का दुखी बिग रूप हो जाए, संत के दुखी को दर्ग मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना दृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए। पया कीर्तन मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आव सास गिरास, सब कस वरते तिसका किया जैसा करे तैसा गुथी, अपना खेल आव करने हार, दूसर कौन कहे बीचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजहो सियानप सुरजना सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पव जाय। अष्टपदी मानुख की टेक, वृथ्वी सब जान देव।

कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उस्तत मन में कारणिकार कर मर मेरे सदव्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो।

निर्वाण एक ऊपर देह जन की आसा तस की कटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जस मन पुहुख नानक तिसे ना लाग है दुख जिस कौ हर प्रभ मन चेते आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेव कव किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुरु प्रसाद तत सब बूझया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल

आया सुवाद। प्रभु के रंग राजन रहे गुर कै भजन पदार्थ लहे वज दाते तो काटन हार जा कै संग तरे संसार जनका सेवक सोड़ भागी जन के संग एकले विलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच गा सच है पेह सच नानक होसी पेह सच अष्टपदी

लक्ष्मीदानी बारंबार बार प्राव जपिए पी अमृत हुमान तन त्रपिए नाम रतंजन गुरुमुख पाया तिसके शबर ना इंद्रिताया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसंग नाम राजो जंत्र ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बै

नीत चरण कमल राख मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आव जप हो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सतर को नाव सह सुपाय नान गुन गाओ गुन गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हाँ मैं बिख फैल हो हे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ से अणम सगली मना सा संग पावे सहित हर पूंजी संज करो बेहारी हां सुख दर गय जयकार

तुलसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख कावत नाथ नानक नाम जपो गणता सुभ दी प्रेम रास जाओ मान तनया त्रिह स्वभाव।

अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।

ही मैं है। इसका विश्राम सुन समाध अणह तैनाद कह न जाई अचरित विस्माद। तेन देखा रिसाव दिखाए नान तेहन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट

आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तेह जन कहो सदा नमस्कार श्लोक। पूरा प्रभ राध्या पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सोन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे साथ साथ सिमरो गोबिंद माने अंतर की उतर आए तिंद। आस अनित त्यांग उतरंग संजना की धूर मन मांग छोड़ बेन आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगण सागर तरहो।

सेवक की सेव आद न्याल बकावत रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेव मारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोधन दास विच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ती उज पाए स्थान बार न होए आमन जान हर तन खांड चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतै सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश सब के मद सगल देवदास सुंदर चतुर तत्कता समदर्शी एक दृष्टेता एक फल तेह जन के मुख भणे गुरु नानक नाम भजन मन सुने हुन दान जपे मन कोय सब जोग मह ता की गत होए।

गावै को साज करे तन खेहे, गावै को जी लै फिर देहे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। दिंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगे देहे देहे, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। महाओं के बोलन बोलिए, जित सुन तरे पे।

असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुनगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिब ति पाहे जेता कीता तेता नाऊ विण नावे नाही को थाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीती कपड़ होए दिसाबून लइयै ओ धोए भरियै मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे भी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्निया मन कीता पाओ अंतरगा तीर्थ मन लाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाहो कवन सुवेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माहो कवन जित होवा आकार वेला पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत ना

कृपा करी हम भर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता गल विग सकल दे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांचत फल पावे सोई दुख न दसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुम जो जाहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुर्ता आवई दुख दर्द भव निगंडन नर केरा है हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सतरा सहस पणिज अर्थ सहसुन तीन कह जय भादर सुधी अष्टमी रव वारा तीर सदर्भ ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते गम आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक का है मत एक ना मान्यो सिमर शास्त्र वेद सब बहु के भेद गए हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कह सब तुहे बखान्यो दोहरा।

जगन जगन्नाथ ओ वाहेगुरु अकाल पुरख, ये वाहेगुरु कृपा कर मेरे ते दया कर, क्यों हम अंधले धदे नौकड़े औंकड़ जरा उड़े सवारे उल उल कहते कुल नलियां अखा तू मैं अन्ना नहीं है, मैं अकल का भी अन्ना वा, मैं हर पास्यों अन्ना वा। ज्ञान हीन अग्ञानी ये सतगुरु साहब जी का एक निम्रता का पक्ष है कि इन्नी निम्रता तेरे अंदर होनी चाहिए। ये वाहेगुरु अकाल पुरख मैं अखां दा अन्ना, दीन जेड़ा है ना वह कभी दुनिया च सिद्ध नहीं हो सकता, कुछ उदाहरण दी जा सकता। जेडे सूरमे सिंह ने उन्होंने बड़ी सोझी है, वो तो आवाज मारो उस पासे आ जाते ने, लेकिन सतगुर साहब ने इलाही बाणी च एदू उल्ट फरमाया, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गै ले हो ओर निभावे। भाव सतगुरु जीओ मैं अकल का भी अन्ना वा, मैं कन्ना तू भी अन्ना वा, मैं अखा तू भी अन्ना वा, मैं ज्ञान तू भी हीना है, इस करके मैं तेरे रस्ते ते चल नहीं सकता, मैं तू पता ही नहीं गा। हम अंधले ज्ञान हीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, मैं तेरे रस्ते ते किवें चला। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, ये सतगुर कृपा कर मैनू अपना पला पकड़ा, तेरा पला पकड़ांगा ना फिर पार लगांगा। पिछे जे कई सजना ने ना रौला पाता सी जी, वेखो जी ये लड़के दा पला लड़की फलदी है, ये तो पला वितकरावे नहीं, लड़के दा पला लड़की नहीं फड़ती, असी गुरु नानक दा पला पकड़दे आ। उस दिन गुरु नानक साहब अगे सी, असी गुरु नानक साहब जिस तरह आनंद करते उस तरह करते हैं। उस दिन पला गुरु नानक साहब लेके आए सी, दोवें जने पला जड़ा ना गुरु नानक का पला फड़ते हैं, तो गुरु नानक का पला छुट गया तो कि थां नहीं, इसे करके साडे धर्म तलाक नहीं है। हम अंधले अंधले को गुर अंचल दी जाए, जन नानक चले मलंथा। हे वाहेगुरु अकाल पुरख, धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह तुसी कृपा दे दियो करो, सानू अपना पला पकड़ा दियो, तुहाडा पला पकड़िया फिर तुहाडे पिछे लग के संसार समुंदर तू पार हो जाए। जिन्ने पला गुरु नानक का पकड़ लिया ओदे ए लोक सुखी है, पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। सतगुरु साहब जी ने कृपा करके इलाही फरमान की विचार कराई, विचारा करद्या बहुत भुला हुई। सतगुरु साहब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जान के माफ करो, हुई भुला की माफी करो, कृपा बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए, सतगुर ता पाया सहज सेती, राग रतन परवार परिया, सब दो तगावो हरी केरा, कह नानक आनंद हुआ, ए मन मेरे आतू

0: संत साजन भय सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सांग तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे

ज्ञान खोसी भी सच एक ओंकार सतना करता पुख निर्भव निर्वैर अकाल अजुनी सैब गुरप्रसाद जप आद सच जिगाद सच है भी सच नान खोसी भी सच एक ओंकार सतना करता पुख निर्भव निर्वैर अकाल मूल अजुनी सैब गुरप्रसाद जप आद सच जिगाद सच है भी सच नान खोसी भी सच।

केदार मथुरा काशी कोट तेतीसा देवते सन इंद्रे जासी सिमरत शास्त्र भेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडत गीत कवित कविते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काले वासी मन जोगी दिगंबरा जम्मे सन जासी जो दीसे सो विनसना सब विनस विनासी थेर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थेर होसी थेर